कि वड़वड़ा डीठा हुए कीमत पाए ना कहे जाए कहने वाले तेरे रहस्य माए।

गुण आपको खाड़ा जो सेवा है जो सेवा है तुरजी जा नानक तिन कुर्बाना हर त्यावै है हर त्यावै है तुरजी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी

बेंता तेरी अनेको तेरी अनेको पढ़ सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत से भगत भले जर नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवंता।

pasui tu de api pave sui varta ji tu api karhan so hoi तुदे आपे श्रेष्ठ सब पाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गाऊं गई करते के जी जो सब साईं का जनोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मैडा साई जो तू भावे सोई थीसी जो तू देह सोई हम पाई रहा सब तेरी तू सब नित्याया जिसनु कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप छोड़े आप मिलाया तू दरियाबू सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आंख बखाने जिन हर सेवे अतन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आप ही करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवरण कोए तू कर कर विख जान सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवर डै पहले नवासा पानी पावक तन है किया पंख जो मोह पाग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत से मूड बनाओ हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हूं जती सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया

हो पारा। जब यहाँ खर्क कर तो हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी भूल जो चारे।

सागल द्वार को छोड़ के गहु तुहारो द्वार बाहे गह की लाज अस गोबिंद दास तुहारो राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तो पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्द तो गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलम समरथ स्वामी सो क्यों मरहुम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते राय करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे

रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਦਾਨ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਾਏ ਮਾਨ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਜ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹੇ ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਕੜਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਦਰਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਰਸ ਬੈਰਾਗ ਬੀਬਤਸ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੌਦਰ ਰਸ ਵੀਰ ਰਸ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੌਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਤਮਕ ਮੰਗਲ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਤਮਕ ਮੰਗਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਿਤ ਨਯੋ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ, ਮੋਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟੋ ਸਦਾ ਜੋ ਚਰ ਅਚਰ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਧਨ ਯੋਗ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਈਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, सतगुरु नानक देव साहब महाराज जी तो लै के जिमें वडियाई कर रहे ने उन्हां दी मनौत कर रहे ने ग्रंथ नूं प्रारंभ करन तो पहला के सच्चे पातशाह कृपा करो सुख दिओ विघना दा नाश करिओ जास वडियाई मंगल तो भाव बंद रच के कविता रच के जास करना अपने प्यारे सतगुरां दा ते जिस कार्ज नूं आरंभ कर रहे ने उहदी निर्विघनता वास्ते वो ठीक ठाक विघना तो बिना उद्दम आलस नाल संपूर्ण हो जाए ये इच्छा मन विच हुण जास करना इउं इच्छा रख के उहनूं मंगल किया है जिहदे विच सोहणी कविता होवे ते रस आवे जिहनूं पढ़ के विचार के खुशी होवे इउं कवि भाई संतोख सिंह साहिब जी सोहणे मंगल दे रहे ने सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जी की जिवें वडियाई कर रहे ने पावन मंगल सरवण करना करिए जी
1: दोहरा श्री नानक पुरशोत्तम
0: श्री जो श्रोमणी ने नानक श्री गुरु नानक देव साहिब जी पुरशोत्तम पुरशोत्तम कठा है पुरश ते ओतमंग बन गया दो शब्द ने दो अलफाज ने एक पुरश ते एक ओतमंग ससे नू घोड़े दे विचों ऊड़ा निकलदा है पुरशोत्तमंग जदों आपां इकट्ठा पढ़ांगे पंजां अखरां श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी आम पुरश नहीं हन पुरशोत्तमंग हन सो तो भाव ऊड़ा उत्तम उत्तमंग पुरशां विचों सारियां विचों उत्तम ने श्रोमणी हन इहदा भाव इह है कि सच्चे पातशाह जिन्हें पहला आए ने परम अगे फिर होर फरमान करते ने किन्ने उत्तम ने महान श्रोमणी हन
1: परम परावर नाथ
0: परम ने सब तो वड्डे ने परम तो भाव परावर जी का पारावार ना होवे सो परे तो परे होवे जिहदा था कोई ना होवे नाथ नाथ तो भाव हुंदा मालक सो सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी जिन्ने हस्तियां ने दुनिया दे विच पीर पैगंबर औलीए अवतार अखवाए ने जां भगत जन हन हिंदुस्तान दे विच अवतार अखवाए ने अरब दे विच सो उन्हां नूं पैगंबर कहा गया है जिवें मुहम्मद साहिब जी ईसा जी आदि के पैगंबर मन्ने गए ने इब्राहिम जी और इस तरह ही औलीए पीर शक्तियां वाले भगत लोग जिवें भगत जन हन कबीर साहिब जी आदिक ते होर संत महापुरश जिहड़े दुनिया विच ब्रह्म ज्ञानी आम आउंदे जांदे रहिंदे ने इन्हां सारिआं तों उपर भाव कहिण दा कवि जी दा वी परम परावर नाथ ये जिहड़े परम ने पुरशोत्तम श्री गुरु नानक देव जी उत्तम ने सारिआं पुरशां तों इन्हां तों जे विश्राम पुरशोत्तम ते ही लाईए कवि दी चाल मुताबक तां उत्तम ने ते जां परम परावर जिहड़े परम ओह वड्डे ने परावर बहुत उच्चियां तो उच्चियां हस्तियां संसार विच होईयां ने उन्हां दे वी नाथ ने उत्तम ने तां करके सारिआं तों उत्तम पुरश ने जिन्हें भी शरीर धारण करके हस्तियां धारण करके आए ने भाव उन्हां तों नाथ ने उन्हां दे पूजनीक ने वड्डे ने मालक ने ये कह रहे ऐसी शरदा भावनावां सतगुरु नानक देव साहिब महाराज सतगुरु इस करके वड्डे ने कि बाणी विच भी सवाइयां विच भट जना ने भट बंदी जना ने भी आप जी नूं इहो कहा भी जोत रूप हरि आप गुरु नानक कहायो आप जोत रूप हरि अकाल पुरख ने सतगुरु नानक देव साहिब कहाया है निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो ये भी बच निरंकार नहीं आकार धारण करके स्वय रूप बना के अपना ते जगत विच मंडन कीता है सतगुरु नानक देव साहब महाराज इस करके वड्डे ने कि आप जी प्रगटे ने, जन्म नहीं होया। उन्हां अवतारां वांग, पैगंबरां वांग, पीरां वांग प्रगटे ने, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु ना समय विच काल विच आ ते ना वो जम्मण मरण विच आउंदा है। इस करके वह अजूनी है, सतगुरु प्रगटे ने ते प्रगट होने तो बाद ओहो ही एक जोत, भावें आपां कह दिंदे आ भी दस गुरु साहिबान ने, नहीं गुरु साहिबान, गुरु तो गुरु नानक इको ही है, जोत इको गुरु नानक दी दस जामे धारण किए ने, वखो वखरे दस गुरु ने, गुरु एक ही है गुरु नानक देव साहब महाराज, उन्हां दी जोत वरती है। इस करके प्रगटे ने जिहड़ा जन्म लैंदा वह मरदा भी है, वह खत्म भी हुंदा है। संसार जिन्ना है 84 लाख जूनियां वह एवें ही ने, जो जन्म है सो जन्म मूआ, तो फिर जे जन्म है तो मौत भी है। सच यह है भी सतगुरु नानक देव साहब महाराज प्रगट हो के दस जामिया विचों जोत वरती, तो गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच आत्मा स्वरूप ने हुण भी वरत रहे ने, गए ही नहीं कितें, तो जुगो जोगा टल ने गुरु साहब। इस करके वड्डे ने ते महाराज सच्चे पातशाह जिन्नियां वड्डियां हस्तियां ने उन्हां सारयां दे मालक ने, इन्हां सारयां दा मालक अकाल पुरख ही है ना, जिहदे दर तों आए ने जिन्ने पीर पैगंबर, वह अकाल पुरख ही निराकार तो साकार रूप में गुरु नानक देव साहब के रूप में प्रगट होया है। ये वड्डे ने भाव सतगुरु परम परावर नाथ, परम वड्डियां तो भी उन्हां दे भी मालक ने, जो ब्रह्मा विष्णु शिवजी आदिक भी वड्डे मन्ने गए ने, परम ने उन्हां दे भी नाथ मालक ने सतगुरु सच्चे पातशाह। पावन बाणी नूं पढ़िए तो यह भी पता लगता है भी गुर की भगत कर है क्या प्राणी, गुरु की पूर्ण तौर पर भगती भी गुरु नूं समझ लवे, यह प्राणी बेचारा की कर सकता है, प्राणी नहीं कर सकता बंदा, वह ब्रह्मा इंद्र महेश ना जानी, ब्रह्मे ने ते इंद्र देवते ने महेश शिवजी ने, जिहदी ठस जिहदी समाधि जिहड़ी आ धार्मिक ग्रंथा ने 88,000 साल की भी लिखी है, जदों बह जाता कैलाश परबत के उपर 88,000 साल नहीं उठता, इन्ना निमगन हो जाता। गुरु किड्डी वड्डी हस्ती है भी वह भी नहीं जान सकता भगती करनी, ब्रह्मा इंद्र महेश ना जानी, किड्डे समर्थ ने सतगुरु सच्चे पातशाह। गुरु पदवी इस करके गुरु नानक देव साहब जी कोल है, बाकी जिन्हें हुण तक इस तों पहला सतयुग तो लैके कलयुग तक जिन्हें आए ने, वो कुछ कला संपूर्ण अवतार ने, पैगंबर ने, कुछ पैक अंबरां तो लैके आए ने, कुछ स्नेहे अकाल पुरख दे, कुछ ज्ञान, कुछ थोड़ा बहुता ध्यान, और वह औलीए ने, भगत जन होए ने, शक्तियां वाले सिद्ध लोग होए ने, 84 सिद्ध मशहूर होए ने, बड़ा ज्ञान सी, बड़िया शक्तियां सी, रिधियां सिधियां दे मालक, पर सतगुरु नानक देव साहब महाराज उन्हां सारयां दे मालक ने, नाथ परम परावर नाथ। वेखो कवि जी दी शरदा ते कमाल है ज्ञान, और गुरु प्यारी साध संगत जी परम परावर नाथ कह रहे ने, सारयां दे नाथ ने, ते सिद्धा ने भी उहो ही कहा सी, गोरखनाथ आदिक ने 3-4 बार चर्चा होई सी सतगुरु नानक देव साहब जी नाल, लंबी चौड़ी बाणी है सिद्ध गोष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। इस तों सवाए होर भी जो भाई गुरदास साहब जी ने लिखी वारां विच चर्चा, अचल साहब अचल बटाले दी खीर ते, जिथे इउं कह लईए कि इन्हां ने रिधियां सिधियां विखाइयां, सतगुरु जी ने भी अगों फिर डंडा वरत्या रिधियां सिधियां दा, भी एवें सीधे नहीं होने। सो उत्थे भी चर्चा हुई सी, उस तों इलावा सिद्ध गोष्ट, सिद्ध गोष्ट विच निरा ज्ञान आ, बहुत डूंघे सवाल सिद्धा ने कीते सी, मन बाणी शरीर दे सवाल, मन की है, आत्मा की, शरीर की है, सतगुरां सारे जवाब इन्ने सोहणे दे के ते कमाल कर दित्ती सी। गोरख नूं उदों ही सारा पता लग गया सी वी ये जिवें पहले अवतार आए ने हिंदुस्तान विच कोई विष्णु दा कोई ब्रह्मे दा कोई शिवजी दा ये उस तरह के अवतारी पुरश नहीं है ये तो पार ब्रह्म आप ही आया है नहीं तो मैं जित लैंदा जी उन्हां चों हुंदे तां गोरख भी जती बहुत वड्डा होया महापुरश उन्हें कहा कि महाराज जे तुसीं कोई ब्रह्मा विष्णु शिवजी दे विचों आए हुंदे ना तो मैं जितया नहीं जाना सी तुहाडे तुसीं आए हैं आप अकाल पुरख थोड़ी कमाई बहुत वड्डी है ये उन्हां नूं अखीर ते कहना पै गया सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुगे अंदर जोत जगाई ये बचन सिद्धा ने कहे सी जो भाई गुरदास साहब जी ने अचल साहब की खीरली चर्चा तो बाद लिखे ने कि वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुगे अंदर जोत जगाई तुसीं कलयुग के घुप हनेरे अंदर ज्ञान की जोत जगा दिती शब्द का दीवा बाल शब्द राही जीवां नूं ज्ञान दे जिहड़ा साथों नहीं होया काम सच है असी हार गए तुसी जिते हैं सच्चे पातशाह तुसी बहुत वड्डा पुरख प्रगट होए हुण वड्डा अकाल पुरख ही सच्चे पातशाह सौ सतगुरु की वडियाई पावन बाणी विच सतगुरां भी कीती है पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने जिथे भगतां नूं कहा असी भगतां दे बारे आप जी ने दस्या सी बसंत राग विच वड्डा शब्द है उथे आउंदा है रविदास त्याए प्रभ अनूप कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसै संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप ये गुरु अर्जन देव साहब जी के बचन ने जदों पुछया जी भगत तो होए ने ब्रह्म ज्ञानी पर गुरु नानक देव साहब महाराज जी फिर इन्हां वांग ब्रह्म ज्ञानी सी महाराज कहिंदे नहीं गुरु नानक देव गोविंद रूप गुरु नानक देव साहब महाराज तां भाई गोविंद दा रूप है अकाल पुरख गोविंद ने रूप धारण किया उन्हां उहदा रूप है पार ब्रह्म दा ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ये भी आप जी दे बचन ने कि सारियां तो वड्डे ने साडे पूजने एक सतगुरु नानक देव साहब जी जिन्हां कलू दे समय अंदर साडी इज्जत पत रखी है ज्ञान ध्यान दा बाबे दा कोई अंत नहीं है कोई था नहीं पा सकता इन्ना ज्ञान ध्यान सतगुरु नानक देव साहब महाराज जी कोल है नवां खंडां विच जा के सारे धर्मां दे सारियां धरतियां ते आप जी ने उन्हां नूं भुले भटके हुए लुकाइया कली आम लुकाई नहीं धर्म के आगुआ भी थावां थावां ते जाके उन्हां दी भाषा विच बाणी उचार करके उन्हां दी तसली कराई ज्ञान दिता है एक अकाल पुरख का ज्ञान कराया है ये सच्चे पातशाह जी की विशेषताई है तां भी आप जी परम परावर नाथ ने वड्डे ने कि जेड़े हिंदुआं दे अवतार होए ने केवल उन्हां नूं हिंदू मनदे ने अरब कंट्रियां वाले नहीं मनदे नहीं झुकदे उन्हां अगे जेड़े अरब कंट्रियां विच पैगंबर आए ने मुहम्मद साहब जां ईसा जी आदक इन्हां दे उन्हां नूं केवल इन्हां दे उन्हां दे पैरोकार मनदे ने हिंदू आदक नहीं मनदे धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सारे गए ने सारियां नूं उपदेश दिता वा सांझा हर सच्चे पातशाह ऐसे गुरु साहब ने ता ही जगत गुरु आप जी ने कहा भाई गुरदास साहब जी ने जगत गुरु गुरु नानक देव सारे जगत देव ते अकाल पुरख ही है ना वड्डा सब तो ते सारे जगत दे आप जी गुरु ने ज्ञानवान कोई भी आप जी की बाणी पढ़ के लाहा लै सकता भावें कोई गोरा जां काला है जां अरब कंट्री वाला कोई हिंदुस्तान कोई भी सारी दुनिया सब नूं ज्ञान मिल सब नूं एक दा ध्यान मिल सब नूं मुक्ति मिलती है सब कोई निहाल हुंदा है सो आप जी दा ज्ञान जिहड़ा है वह हद्दां बन्नियां दे विच नहीं है वह रंग रूप दे विच नहीं है वह नसल दे विच नहीं है वह किसी एक एक मजहब दे विच नहीं है कैद विच नहीं है इस करके श्री नानक पुरशोत्तम परम परावर नाथ श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪੂਜਨੀਕ
1: ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ,
0: ਯੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਯੁਗਲ ਭਾਵ ਦੋ, ਯੁਗ ਹੁੰਦੇ ਦੋ, ਯੁਗਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੇ, ਤੇ ਯੁਗਲ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ। ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਆ, ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਸ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੰਧ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਧ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਸੁਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ 2-4 ਟਕੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 4 ਭਰਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਤੀਜੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਨਾਨੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਛੋਲੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਕਣਾ। ऐसी शरदा भावना नाल सेवा कीती। गुरु साहब दे गुण वेख के, दया वेख के, परपकार वेख के उन्हां दे हो गए। वेख गए भाई जेठा जी, इउं कह लई। ते फिर ऐसी सेवा कीती अडोल रह के, सौ महाराज सच्चे पातशाह गुरु ते भावना दा भुखा है, गुरु दा जोत सरूप है। सच्चे पातशाह ने भावना वेख के उन्हें बख्शिशां होई गईआं, जिवें जिवें भावना सी। शादी भी गुरु घर विखे ही हुई महाराज सच्चे पातशाह, फिर भी शरदा भावना विच कोई फर्क नहीं आउंदा, इन्नी शरदा जमाता बन के भी। सौ साल संगत जी, 28 साल सेवकी कीती लिखिआ, 28 वर्ष सेवकी कीती, सौरे नहीं जाते। सौरा कनक सो करके गुरु घर नूं नहीं जाणिआ। तीन साहिबजादियां दे जन्म उत्थे ही होए सी, गोइंदवाल साहिब आप जी दे ग्रह विखे, गुरता गद्दी तों पहलां ही। सो महाराज सच्चे पातशाह जी ने इन्ना हुक्म मन्निआ, अपने आप नूं मार के समर्पित हो। हुण इह कमाल आ गुरु ज्योति दा, भी जिस वेले समा आया गुरु अमरदास महाराज जी, उन्हां दा इह कौतक सी भी 101 साल की उम्र शरीर काजू लैके आए सी तुरों, 94 साल की उम्र में शरीर छड्ड दिता महाराज। बीबी भानी जी एक दिन आए कोल बैठे सी, बीबी सौ बाबा मोहरी जी दे घरों भी ननान भरजाई बैठियां सन। गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, सुन पुत्री, जे रामदास जी शरीर छड्ड जाण हुण फिर तू की करेंगी, ये वचन कीता। सो उस वेले बीबी भानी कहन लगी, महाराज फिर मेरा की जाण आ, पति ब्रता औरत सी, फिर मेरा की रहण आ। अपने सुहाग भाग वाले गहने ला के महाराज के चरणा च रखते भी, फिर मैं भी नाल ही, मैं भी नहीं रहना। सच्चे पातशाह कहिंदे, चौके पा लो, अकाल पुरख भली करनगे। उन्हां दी उम्र पूरी हो गई है, असीं आप दी उम्र दे रहे हैं। 6 साल 11 महीने 18 दिन गुरु रामदास जी ने गुरियाई की है सतसंग जी, महाराज जी ने अपनी आजू दिती। केवल जोत नहीं टिकाई, ये समर्थ गुरु कर सकता वा, दुनिया दे विच हर कोई नहीं बस के। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आजू भी बख्शी, ते गुरता गद्दी भी बख्शी, जोत भी गुरु नानक की करामातां दे समेत शक्तियां दे टिकाई, ते शरीर करके उह कहिए तन भी ते मन।

भेदी नाम का मुसमस प्राधि समस स्तम तेरा जोर चातरी छंद जले है तले है पीते पे है प्रभु है जू है दिस है पीस है प्रभु प्रयात छंद है अगाधी अबादी आनंदी स्वरूपे नमस्त मानी समस्त निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वप्रीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतारंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवम नो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्ध निवासी चरपण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजी अखल त्रिमकल अक्रम सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणी सर्वंग त्राण सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआ छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्व मान त्रिमान देव पेहु आद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व कोपुर काल जत्तर तत्तर विराजी ही अवधूत रूप लसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न देख आद पुरख अजार मरता जौन आद सेख देश और लपिश जाकर रूप रेख नाराग जत्तर तत्तर दिशा विशा हो फैल अनराग नाम का मेहन पे खतता मुन जाए नाम काम बिहित बहीन पेखत ताम हूँ नह जाए सरमान सर्वत्र मान सद मरता एक नेक मुँह एक मुत नेक दर्शन की रूपा नेक खेल खेल खेल खेल अंत को फिर एक

कृतं कृता कृता तर नित्रेतु है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता मृता मृता अजबा कृता मृता मृता नर नायक है खलकायक है बेसुंदर है करुणालय है नपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रक्तापन है जप जापन है अकरण कृता है सर्वा कृता कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्व आत्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरज नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंद नमो बीज बीजे नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो मंत्र मंत्री नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रनाद विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशा से नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अक्षरी छंद अजाय अलय अभय अभय अपूवाजु अनास कस अगंज पंज लख पख अकार दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाहटा हनाथे प्रमाथे जोनी मोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म परम गंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंदे नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजल नामे समस्तल निवासे कामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सो धर्मंग विपूते सदा सचदानंद स्तरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब भूते गजायब गनीमे हरिम करीम करीम बोल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजयम प्रभु सुभुम सर्वदा सर्वजुगते

अंग स्वरूपे सदय अंग संगे अपंग अंग विपुते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शब्द समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सूर सरार्दन शब्द सुधा सूर सरार्दन शब्द सुधाधक संत समूह अनेक पति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौन देख प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति विनय रति के माति मतांग जरे जरसांग अनुपातांग सरंग सवारी कोट तरंग कुरंग से कुदत पावन के गौर को जातन बारे भारी भुजान के भूपली बेद न्याव शीस न जात बचारे ते भय तो काहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दसान को बाजत टहोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गुजानक सुंदर सद ही हराज हजारे भूत भगवान के भूपत कौन गणा नहीं जात बचारे श्री पाल श्री भगवान भजे बिरंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक सिखाई वेद पुराण कतेव करान जमीन जवार सवाल के पिखाई पवन आहार जति जत धारु सब सो विचार हजार क देखा श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति मनेक लिखा शुद्ध सपाहा दुरंत दुर्बाहा सो सासुना दुर्जान दलांगे भारी मन पर मन मै कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर पार बड़े बरे अर विचार हिसार की धार पुछैया तोर देश मलिंद मुआसन माते जान की मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़ना हार सो बातन ही चकचार लवैया साहब श्री साहब को शरण नायक जाच करे एक सो एक दवैया

पापन के बह पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्तर सबै अवलोक चपाएंगे। मान इंद्र गजेंद्र नाद बजाउन तरलोक को राज करांगे। कोटि नानक जात गदान अनेक स्वंबर साध बिरांगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पातन पसिजम फास पुरांगे। जे नार श्री पत के प्रस है पागू ते नार फिर ना देह तरहंगे। काह भयो जो दो लोचन मूंद काय बैठ लियो भक्त अन्न गायो। नाथ प्रियोली सास इंद्र लोग परलोग वायो। बस की विखे सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। साच का हुसन रोस बैजन प्रेम की उतनी ही पपायो। काहुल पाहन पुत्र सिर काहुल लिंग गरे लटकायो। काहुल क्यों हर अवाची दिशा मह काहु पछाह को शीस नवायो। को बुतान को पूछ तो है पास कुमर तान को पूजन तायो। कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूज तो है पास कुमर तान को पूजन तायो। कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि वाच बेनती चौपाई। अमरी करो हा दर छा पूर्ण हो चित की छा। तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबैत मुकाबो हो आप हा दैम बचावो। सुखी बसाई मोरो परवारा। सेवक सिख सबाई करतारा। मोर छा निज कर दै करे आई सबैरन को आसन करिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अगर न त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चौन चौन सत्र हमारे मारिय है आप हा दया मुझे अबरे आई मरण काल का त्रास निवरे है। जोसदा हमारी पच्छा श्री अस तो जो करे हो रिछा। राख लियो हम राख नहारे साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ। वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोग सवारा। नमस्कार है ता हमारा जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जचन उपजायो आदम ते कै अवतारा। सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तसी को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो। सत्रन को पालमो मत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बड़े की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट का फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाना कट कट की पड़ पड़ की जाना। जबद कर करा करतारा प्रजा तर तब देह पारा। जब या कर करत हो कब हो तो मैं मिलत देह धर सब हो। जिति बदन श्रेष्ठ सब तहराया पापनी बूझ उचारा। तुम सब ही तेरा तिरालम जानत बेत भेद कर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ। ताका मूड़ो चारद भेदा जाको पेमन पावत भेदा। ताको कर पाहन अनमानत माह मूल कच भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेव।

बैठा हो कहो सिमट भाई शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पब आदि जगत स्वरूप सजम पब अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बर सिख संघरो दुट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता।

पिता की कार्ड निकट न आए है। रक्षा होता है सब काला दुष्ट अरिष्टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो ताकि ताप तनुक में हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुढ़ छा सब सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा काल पास तीता हूँ बारा जिन्ना नाम तिहारू कहा दाल दुह दुख ते रहा। कड़क कीत मैं शरण तिहारी आप हाद्य लिहू बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुख दुख ते लिहू

कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटुंब तू जे देखदा चल नाही तेरे नाले सार तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू हुए तेरे नाले

जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन ला आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तो

सो पहुंचा नाही मनसा सच समाणी जनवरतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जन्म निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे।

चित करे रसना कहया कुछ न जानी, चित जिन का हिर लिया माया बोलन पे रवानी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मान लागा एह हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन है आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्ति आप उपाय, कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख सह बुझाए। तोड़ा बंधन होवे मुक्त शब्द मानो साए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सुन लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्त्व सार न जानी, तत्त्व सार न जानी। गुरु बाजो तत्त्व सार न जानी, तही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मनुष्या बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए, जिसनु अंधन हल लागे।

ऐसा सतगुरु जे मिले तिस नूं सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप मुल्क है भगत न।

पाए, पल्लै पिए हर रस बौन तसना लाग आए। ए हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए, कह नानक होर आन रस सब विसरै।

ला पावदे राजा में ताकूर हो सुखदार काम नित सब कुछ ये बे बेकरे विचार अंधेरे ज्ञान में उन्हें पाए परे मरदार ज्ञानी नच्चे वाजे वावे रूप करे शिगार ऊंचे कुके वादा गावे जो दगा विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जसन जे धरे प्यार।

बिना मेरा दृष्टि ना। तग कपाह कती है ब्राह्मण मिटे आए कुफ करार न खाए सबको आख है पाए होए पुराना छुट्टी है फिर पाई है हो नानक तगन टुटे जे तक।

लोचन सदना सैन तरै कह रवदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे।